नष्टेयाता तवाचोता सोवाने हकेवेनष्टेयाता नएंगता सोवाने आ याय आ याय हा ए मंग मंग कोतोरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कोतोरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया शेक